पर हमरे दुष्ट सभा तुम काबहो पाप हाथ मोहे बचावो सुखी बसा मोरो परवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सबर को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन के रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्या हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आपा दे मुझे वरिया मरण काल का त्रासन वरिया है।

प्यारे तीन बन दुष्टन के अंता तुमो पुरी चतुर्दश खंता। काल पाय ब्रह्मा बप तरा, काल पाय शिव जी बप तरा, काल पाय कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार ताय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जचन उपजायो, आदि अंते का अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सर्व प्रजा जन आप सवारी, सब कुन को सब गुण सुख दियो। सतन कोपल मोहबत की हो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर अस्तु लासा, पर कृपा दृष्ट कर पूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाण, कट कट के पट पट की जान।

सब हूँ जेते बदन सिर सब धार है आप अपनी बुझ चार तुम सभी तेरा निरालम जान भेद भेद और आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेव न पापत भेदा ताको कृपा अनुमानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कैसा सब निरंकार का चिंतन पेव आप अपनी बुध चेते वर्णत भिन्न भिन्न तुम तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के सजा प्रथम संसारा।

कौन से मठ पर शंकर खट सगरी सिद्ध काय चंपव आज गास्रो स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सख्यो बार सख संगरो दुष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जय अस्तु तप सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हुआ मरे पुरख चरण पग परे ते आरे तिनके तुम संकट सब

दोहरा जो निज प्रभो सोका सो कह हो जग माहे जो तह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाए दोहरा हर हर जन तो एक है बिब विचार कछ नाही जलते उपजत रंग जो जली बिखर सुमाए दोहरा जब आयस प्रभ को भायो जन्म तरा जग आई अब मैं कथा संक्षेप

तू समर्थ जिता कोय नाही ओथै तेरी रख अग्नि उदरमाही सुन कै जम के दूत नाय तेरा छड़ जाहे ओजल विकम सुगाहु।

विस्माद रूप विस्मा रंग विस्मा नंगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पान विस्माद अग्नि खेडा बेडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह

अर्चा पूजा गर्भस बहकर जोग सुन त्यावन जेते लख नाम करतार। सुख मूर्त नाम निरंजन का कायाकार सतिया मन संतोख बजा देने के विचार। दे दे मंगे सहसा गुना सोव करे संसार। चोरा जा रहे ते कुड़ियारा खारा बाबे कार एक हुंदा खै चलया था उतना भिकाई कार। जल था जिया प्रिया लोआ आकार आकार ओ जिया किस तू है जाने तिना भी तेरी सार। नानक भगता

जे कोहे तो गुमे रुति हूँ रत होए नानक पाह बाहर कुर रंग न सोए पै बिच खुम चढ़ाई है शर्म।